0: ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁਇਕਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਬਰਿੰਗ ਰੇਡੀਓ 94.7 FM, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਥਰਸਡੇ ਫਰਾਈਡੇ 7 ਤੋਂ 8 ਅਤੇ ਸੰਡੇ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਇਕਲੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
1: Friendship.
2: प्रोटोकॉल तोड़कर शी जिनपिंग के स्वागत के लिए खुद पहुंचे ट्रंप। का जोरदार स्वागत।
3: प्रेसिडेंट शी एंड आई हैव फोर्ज्ड ए फ्रेंडशिप, ए ट्रूली ग्रेट फ्रेंडशिप।
2: प्रोटोकॉल तोड़कर शी जिनपिंग के स्वागत के लिए खुद पहुंचे ट्रंप। शी जिनपिंग ने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास लोगों के भलाई के लिए हो, ये दोनों देशों की जिम्मेदारी। क्या कारोबारी लड़ाई के बाद शुरू हो रहा है दोस्ती का नया दौर? करेंगे चर्चा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोले फलस्तीन के राष्ट्रपति, खतरे में फलस्तीनी लोगों का वजूद। सेटलर्स हिंसा को लेकर इसराइल पर उठाए सवाल। एआई एजेंट ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार के पोर्टल में लगाई सेंध, सरकार ने शुरू की जांच। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने लगाया आरोप, इस ब्रीच की जानकारी ऑस्ट्रेलिया को देने में ओपनएआई ने बहुत देर की। अलनिन्यो ने बढ़ाई चिंता, साल के आखिर तक पीक की आशंका, क्या होगा हम पर असर, जानेंगे कार्यक्रम में।
4: इस मुआशरे में एक औरत गुजर रही है चीजों से, उतना अगर एक मर्द गुजरे तो शायद वो जिंदा भी ना रह पाए।
2: काम करने को लेकर पाकिस्तान की कुछ महिलाएं क्यों रही हो रही हैं ट्रोल, ऑफिस में क्या होती है परेशानी, पाकिस्तान की कुछ महिलाओं ने साझा किया आप बीती।
3: President Xi, I'm delighted to welcome you to the beautiful White House. Such a great honor.
2: स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात उस मुलाकात की जो दुनिया के दो सुपर पावर नेताओं के बीच हुई। एक दशक से भी ज्यादा वक्त के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 3 दिन के दौरे पर अमेरिका पहुंचे हैं। अब से कुछ वक्त पहले ही शी व्हाइट हाउस पहुंचे, ट्रंप ने उनसे हैंडशेक किया, गर्मजोशी से स्वागत किया। व्हाइट हाउस में एड्रेस के दौरान ट्रंप ने कहा कि उन्हें चीन और अमेरिका के रिश्तों पर फख्र है। इस दौरे में एजेंडे में कई मुद्दे हैं, व्यापार से लेकर ताइवान और ईरान जंग तक। बातचीत का एक बड़ा मुद्दा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होगा।
5: इस विजिट के दौरान हम सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और सुपर इंटेलिजेंस से जुड़े अहम मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। आज इन क्षेत्रों में हम जो फैसले लेंगे उनसे आने वाले कई दशकों तक शांति और समृद्धि को बढ़ावा मिल सकता है।
2: वहीं शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों देशों की जिम्मेदारी है कि एआई का इस्तेमाल और विकास लोगों के हित में हो।
6: चीन और अमेरिका के हित आपस में गहराई से जुड़े हैं और हमारे पास साथ मिलकर काम करने के बहुत सारे मौके हैं। चीन अमेरिका सहयोग से शायद दुनिया की हर समस्या हल न हो, लेकिन हमारे सहयोग के बिना दुनिया की कई समस्याओं को हल करना मुश्किल होगा। चीन ने अपने दरवाजे खुले रखे हैं और वहां निवेश करने और बिजनेस करने की इच्छा रखने वाली अमेरिकी कंपनियों का स्वागत करता है। हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका में चीनी कंपनियों के साथ भी निष्पक्ष व्यवहार किया जाएगा। चीन और अमेरिका दोनों ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अग्रणी देश हैं। हमारे पास एआई को अच्छे कामों के लिए डेवलप करने की क्षमता और जिम्मेदारी दोनों हैं, और ये सुनिश्चित करना भी हमारी जिम्मेदारी है कि एआई का विकास हमेशा इंसानों के कंट्रोल में रहे और लोगों की भलाई के लिए हो।
2: और कभी ट्रेड वॉर और दबदबे की लड़ाई में उलझे दोनों नेताओं के बीच रिश्तों में काफी गर्माहट देखने को मिल रही है। जिनपिंग जब अमेरिकी एयरबेस पर पहुंचे तो उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। तमाम प्रोटोकॉल तोड़ते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शी के स्वागत के लिए खुद ज्वाइंट बेस एंड्रयूज के रनवे पहुंचे। 1962 के बाद ये पहली बार है जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस एयरबेस पर किसी विदेशी नेता का खुद स्वागत किया। प्लेन से उतरने के बाद दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाए, शी जिनपिंग को रेड कार्पेट वेलकम मिला, 2 B-1 बॉम्बर्स ने ऊपर से उड़ान भरी, अमेरिकी एयरफोर्स के बैंड ने अमेरिका और चीन दोनों के राष्ट्रगान बजाए और दोनों देशों के झंडे लहराए गए। इस बार एआई का

0: काफी फोकस में है। इस पर और जानकारी दे रहे हैं बीबीसी के चाइना कॉरेस्पॉन्डेंट स्टीफन मैकडॉनल्ड।
1: AI could be a big part of their talks. For example, there's been
2: AI उनकी बातचीत का एक बड़ा हिस्सा हो सकता है। मिसाल के तौर पर चीन से ये सुझाव आया है कि दोनों देश कोल्ड वॉर के दौर की तरह एक हॉटलाइन शुरू करें, ताकि अगर किसी तरह का AI मेल्टडाउन हो तो दोनों के बीच तुरंत संपर्क हो सके। इससे पता चलता है कि चीनी सरकार भविष्य में इसे लेकर कितनी फिक्रमंद है। हो सकता है अमेरिका भी इसके लिए तैयार हो जाए। इसमें हर्ज ही क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ने AI पर और ज्यादा नियमों का विरोध किया है। वो साफ तौर पर चाहते हैं कि अमेरिका इस इंडस्ट्री में सबसे आगे रहे, और उनका मानना है कि रेगुलेशन से अमेरिकी कंपनियों के काम में रुकावट आ सकती है। लेकिन अगर AI से जुड़ी कोई इमरजेंसी होती है तो चीन के साथ इस तरह की हॉटलाइन रखने में हर्ज क्या है? इसीलिए हो सकता है कि ये उनकी बातचीत का एक बहुत अहम हिस्सा बन जाए, और ये सब ईरान के खिलाफ जंग, एक दूसरे की इकोनॉमीज तक पहुंच और कई दूसरे मुद्दों पर बातचीत शुरू होने से पहले की बात है।
0: और ट्रंप की सरकार के दौरान अमेरिका और चीन के बीच कारोबारी जंग चली, दोनों ने ट्रेड टैरिफ्स लगाए, फिर दोनों देशों के बीच चीन पर लगे भारी भरकम अमेरिकी टैरिफ्स को टालने के लिए जो सहमति बनी थी उस ट्रेड समझौते की म्याद जनवरी तक बढ़ा दी गई। लेकिन कैसे अमेरिका की छोटी कंपनियों से लेकर बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन तक सभी चीनी सामान पर लगाए गए भारी टैरिफ्स की लागत से अब भी जूझ रहे हैं, देखिए बीबीसी संवाददाता समीरा हुसैन की रिपोर्ट।
3: सनविन ग्रोसरी स्टोर में एशियाई देशों के खाने का सामान मिलता है। इसमें ज्यादातर सामान चीन से इम्पोर्ट होता है। जैस्मिन भाई यहाँ की मैनेजर है।
4: जब ग्राहक यहाँ आते हैं तो पूछते हैं कीमत में इतना फर्क क्यों है, मैं कहती हूँ जो है यही है।
3: उनका स्टोर एक ऐसी समस्या से जूझ रहा है जिसका सामना हर छोटी बड़ी कंपनी को करना पड़ रहा है।
4: उन्होंने कीमतें बढ़ा दी हैं, टैक्स बढ़ा दिया है, जाहिर है मुझे भी कीमत बढ़ानी पड़ेगी, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है।
3: एक दूसरे पर बदले में लगाए गए टैरिफ एक बुरे सपने जैसा है।
4: हमारे यहाँ एक बहुत मशहूर चाइनीज ऑयस्टर सोया सॉस है, और हम इसे पहले $2.99 पे बेचते थे, लेकिन अब हर बॉटल की कीमत लगभग $6 हो गई है, यानी कि 60% का फर्क है, जो कि बहुत ज्यादा है।
3: और क्या ये टैरिफ की वजह से है?
4: हाँ, ये टैरिफ की वजह से ही है।
3: शी के अमेरिका पहुंचने के बाद अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने फॉक्स न्यूज से कहा कि दोनों देशों के बीच ट्रेड पर बनी सहमति नवंबर में खत्म होने वाली है, जिसे जनवरी तक बढ़ा दिया जाएगा। इससे छोटे कारोबारियों के साथ साथ बड़ी कंपनियों को भी राहत मिलेगी। लेकिन जब तक अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड को लेकर रिश्ते तनावपूर्ण बने रहेंगे, तब तक सभी इम्पोर्टर्स पर अचानक और नए टैरिफ लगाए जाने का खतरा बना रहेगा। बीबीसी संवाददाता समीरा हुसैन की रिपोर्ट।
0: और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि जल्दी अमेरिका चीन की दोस्ती के दो दूत अटलांटा के चिड़ियाघर में पहुंचेंगे। ये दो पांडा हैं जिनका नया घर अब अमेरिका होगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को लेकर फिक्र जताई जा रही है। अमेरिका और चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सही इस्तेमाल को लेकर बात कर रहे हैं। वहीं FBI और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश AI की वजह से मुश्किल में दिखे। ऑस्ट्रेलिया में OpenAI से जुड़े एक AI एजेंट ने सरकारी हेल्थ केयर पोर्टल को हैक कर लिया। जांच इसकी शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा है कि इस ब्रीच की जानकारी ऑस्ट्रेलिया को देने में OpenAI ने बहुत देरी की है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। जून में भी OpenAI के एक बेलगाम AI एजेंट ने ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सल हेल्थ केयर स्कीम मेडिकेयर की वेबसाइट को हैक कर लिया था, और फिर उसकी पहुंच प्राइवेट डेटा तक हो गई थी। इनमें से कुछ फाइलें सार्वजनिक नहीं थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई सरकार को इस हैकिंग की जानकारी इसी महीने मिली है। ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री ने OpenAI के AI के CEO सैम ऑल्टमैन की आलोचना की है और कहा है कि उन्होंने इसे ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया।
2: मैंने OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन से बात की और इस घटना को लेकर ऑस्ट्रेलिया की गंभीर चिंता जाहिर की। मैंने ये भी कहा कि सरकार को इस घटना और इसकी पूरी जानकारी देने में कंपनी ने बहुत ज्यादा देरी की, और जिस तरह से सरकार को इसकी जानकारी दी गई वो भी स्वीकार्य नहीं है।
0: इसके जवाब में OpenAI ने कहा है कि उसे इस हैक के बारे में अगस्त में ही पता चला था और इसकी जांच के लिए उसे वक्त चाहिए था। कंपनी ने बताया कि उसने 10 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया की सरकारी एजेंसी के एक जनरल इनबॉक्स पर ईमेल भेजा था। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स बनाया है। इस बारे में सिडनी से ज्यादा जानकारी दे रही है बीबीसी संवाददाता कैटी वॉटसन।
5: Yeah, so this was an AI agent that
4: was... हाँ, ये एक AI

0: एजेंट था जिसे ओपन एआई ने बनाया था। यह ऑस्ट्रेलिया के यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम मेडिकेयर से जुड़े एक डेटा पोर्टल में घुसने में सफल रहा। इसे डेटा और नंबरों का एक्सेस मिला, लेकिन कोई संवेदनशील या पर्सनल जानकारी नहीं मिली। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि इससे किसी की पर्सनल जानकारी लीक नहीं हुई। फिर भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रिचर्ड माल्स ने कहा कि भले ही ये मामला थोड़ा कम चिंताजनक था, लेकिन भविष्य में होने वाली सिक्योरिटी ब्रीच एक बड़ी चिंता हो सकती है। इसलिए उन्होंने इस घटना की जांच करने और ये समझने के लिए एक टास्क फोर्स बनाया है, जिसमें साइबर सिक्योरिटी एजेंसियां और एआई एक्सपर्ट शामिल हैं। वो ये भी पता लगाएंगे कि ऐसा कैसे हुआ और भविष्य में ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जाए।
1: इस बीच खबर आ रही है कि कुछ हैकर्स ने दावा किया है कि अमेरिका की एजेंसी एफबीआई के कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लिया गया है। उन्होंने एजेंसी के स्टाफ की पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुरा ली है। साइबर क्राइम ग्रुप शाइनी हंटर्स के मुताबिक उन्होंने 38,000 लोगों का डेटा चुराया है। एफबीआई का कहना है कि वो इस सेंधमारी की जांच कर रहा है। और अमेरिका के न्यूयॉर्क में चल रही संयुक्त राष्ट्र महासभा का आज तीसरा दिन है। कल वहां ईरान के राष्ट्रपति का भाषण चर्चा में रहा, तो आज फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में सेटलर्स की हिंसा पर इसराइल को घेरा।
2: खतरा अब सिर्फ दो राष्ट्र समाधान को कमजोर करने और फलस्तीनी स्टेट बनने से रोकने तक ही सीमित नहीं है। अब वो हमारी ही जमीन पर फलस्तीनी लोगों के जीवन और अस्तित्व के लिए खतरा बन गए हैं। फलस्तीनी लोग कभी अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं होंगे। ना सैन्य कब्जा, ना सेटलमेंट्स का विस्तार, ना जमीन पर कब्जा और ना ही आतंकवादी हिंसा इसका समाधान हो सकता है, ना ही इससे स्थायी सुरक्षा कायम की जा सकती है।
1: महमूद अब्बास ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसराइल के जारी हमले और सेटलर हिंसा को दुर्भावनापूर्ण साजिश बताया। फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को ऑनलाइन संबोधित किया, क्योंकि उन्हें अमेरिका का वीजा नहीं मिला। कुछ देर बाद इसराइल के पीएम बिन्यामिन नेतन्याहू भी संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलेंगे। और वर्क प्लेस हैरासमेंट, काम करने को लेकर ऑनलाइन ट्रोलिंग, कई महिलाओं को ही झेलना पड़ता है। भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी कई महिलाओं को इससे दो चार होना पड़ता है। वहां की इन महिलाओं ने बीबीसी के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। देखिए पाकिस्तान से अनीक जाहिद की रिपोर्ट।
3: मेरे साथ जो प्राइवेट सेक्टर में हुआ कि मैंने ये कहा कि मुझे अगर आप मुझसे खुश नहीं है सर तो ठीक है, आप मुझे जॉब से निकाल दें। सर ने मुझे गले लगा लिया, क्यों, किस खुशी में। तो मैंने उसके बाद जॉब छोड़ दी।
4: इसका नाक देखो, इसका नाक कितना बुरा है, ये बोलती कैसे है, ये चलती कैसे है, इवन के प्राइवेट बॉडी पार्ट्स पे भी लेकर के इसकी ये चीज देखो, ये बहुत ज्यादा अभी तक भी मतलब काफी लोग हैं जो इस तरह से मुझे हरास और बुली करते हैं।
5: जितना इस मुआशरे में एक औरत गुजर रही है चीजों से, उतना अगर एक मर्द गुजरे तो शायद वो जिंदा भी ना रह पाए।
6: वफाकी मुहतसिब,
7: फेडरल ओम्बड्समैन फॉर हैरेसमेंट के आंकड़ों के मुताबिक साल 2025 में पाकिस्तान में 711 महिलाओं ने उत्पीड़न की शिकायतें दर्ज कराई। हालांकि ऐसी हजारों महिलाएं हैं जो इस तरह की घटनाओं को चुपचाप सहन करती हैं। हमने ऐसी ही कई महिलाओं से बात की जिन्होंने उत्पीड़न की वजह से अपनी नौकरियां छोड़ दी और अलग रास्ता चुना। शेजा हुसैन एक टिकटॉक इन्फ्लुएंसर हैं। उन्हें कैसी मुश्किलें आई?
3: सर ठीक है, ना प्राइवेट सेक्टर्स में हमारे लिए जॉब्स हैं, ना सोशल मीडिया हमारे लिए है, ना बिजनेस हमारे लिए। हम बिजनेस करने के लिए जाएं, शॉप्स वालों से जाके हमें मिलना पड़ता है, बात करनी पड़ती है। तो
7: दरअसल पंजाब के पिछड़े इलाकों में महिलाओं के लिए आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना अब भी एक बड़ी सामाजिक और कल्चरल चुनौती है। बहावलपुर की फूड ब्लॉगर खदीजा मलिक ने हाल ही में अपना रेस्टोरेंट खोलने का फैसला किया, लेकिन उन्हें आलोचना और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा।
4: तो मुझे ये लगा मुझे अपना खुद का रेस्टोरेंट बनाना चाहिए। इतनी जल्दी लोग लड़की को इतना आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। उसमें कुछ लोग हैं जो कि मुसलसल एक ग्रुप है लोगों का, जिन्होंने मुझे इवन के मेरे पास्ट, मैं कहाँ से आई, मैं कहाँ से बिलोंग करती, मेरी फैमिली तक को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। यहाँ तक के लोग ये कहते हैं कि इसके घर में से दो टाइम की कोई रोटी नहीं देता, ये मेल कुछ है वो कमेंट्स करते हैं। इसलिए ये कैमरा उठाकर एक एक की रेस्टोरेंट्स पे पहुंच जाती है भीख मांगने के लिए कि मुझे खाना दो। मेरी पोस्ट के नीचे कमेंट्स करके कि फूड ब्लॉगिंग और बिजनेस करने में बहुत फर्क होता है, ये मर्दों का काम है, मर्द कर सकते हैं। इस सब ट्रोलिंग की वजह से मैं पूरी पूरी रात रोती थी।
5: बीइंग अ मॉडल ऑब्वियसली सोशल मीडिया इज द मेन थिंग जहां से हमें शूट्स वगैरह और अप्रोचेस आते हैं। तो अगर मुझे 10

0: क्लाइमेट एडिटर जस्टिन रॉलेट की रिपोर्ट।
1: पिछले डेढ़ वर्षों के रिकॉर्ड में ये अलनीनो सबसे शक्तिशाली साबित होने जा रहा है और यूके मेट ऑफिस का कहना है कि इसके प्रभाव अभी से महसूस किए जा रहे हैं। हमने इंडोनेशिया के जंगलों में आग देखी है और दुनिया के दूसरे हिस्से पनामा कनाल में जल स्तर कम होने से जहाजों की आवाजाही बाधित हो रही है।
2: इस बार का अलनीनो अभी से रिकॉर्ड में सबसे ताकतवर हो चुका है। इस इलाके में समुद्र की सतह का तापमान अब औसत से 3 डिग्री से भी ज्यादा ऊपर है। अलनीनो के इस साल आगे चलकर अपने सबसे ताकतवर दौर में पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि मौसम में बड़े बदलाव हो सकते हैं।
1: ये दुनिया के मौसम को प्रभावित करने वाले सबसे जरूरी सिस्टम में से एक है और इसकी शुरुआत यहाँ होती है। हमारा ये शानदार ग्लोब दिखाता है कि इक्वेटर के आसपास पैसिफिक ओशन में गर्मी कैसे फैली हुई है। आमतौर पर हवाएं दक्षिण अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की तरफ बहती हैं। ये सूर्य से गर्म हुए समुद्र की सतह के पानी को पश्चिम की तरफ धकेलती हैं। लेकिन अलनीनो वाले सालों में हवा के झोंके उल्टी दिशा में चलते हैं, इससे उस गर्म पानी का कुछ हिस्सा पूरब की तरफ चला जाता है। जैसे जैसे प्रशांत महासागर का बीच वाला हिस्सा गर्म होता है, हवाएं कमजोर पड़ने लगती हैं, इससे और गर्मी बढ़ने लगती है। इस तरह एक चक्र बन जाता है। पानी जितना गर्म होता है, हवाएं उतनी कमजोर पड़ती हैं और दक्षिण अमेरिका के तट के पास उतनी ही ज्यादा गर्मी बढ़ने लगती है। इसे दूसरे एंगल से देखें तो ये और साफ नजर आता है। हमें सतह के नीचे देखना होगा। समुद्र से मिल रही जानकारी दिखाती है कि भूमध्य सागर यानी इक्वेटर के पास प्रशांत महासागर की सतह के नीचे गर्म पानी की एक बहुत बड़ी लहर बन रही है। अलनीनो के हिसाब से भी ये पानी बहुत गर्म है। आमतौर पर एक ताकतवर अलनीनो में समुद्र की सतह का तापमान करीब 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि इस साल ये बढ़ोतरी 3 डिग्री से भी ज्यादा हो सकती है। कुछ गर्मी और उसके साथ नमी अभी से वातावरण में पहुंच रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आगे ऐसा और बड़े पैमाने पर होगा। इसके कारण दक्षिण अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में सूखा पड़ने और जंगलों में आग लगने की आशंका है। वहीं इक्वाडोर और पेरू के तटीय इलाकों और अमेरिका के दक्षिणी हिस्से के कुछ इलाकों में बहुत तेज बारिश हो सकती है। बाढ़ आने का भी खतरा है। ब्रिटेन प्रशांत महासागर से काफी दूर है, फिर भी वहाँ अलनीनो का संबंध पतझड़ में ज्यादा बारिश और तूफानों से है। सर्दियों के आखिर में ज्यादा ठंड पड़ने से भी इसे जोड़कर देखा जाता है।
0: और बीबीसी दुनिया में आज के लिए इतना ही। आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं, एक्स पर मेरा हैंडल है @bbcsarika।
3: सोया जी, कुछ खबरां जेडियां तुसी सुनियां सबरंग रेडियो 94.7 FM ते सारी दुनिया भर दियां किथे किथे की कुछ चल रहा है। काफी ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੋਲ ਤੇ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਬਟ ਗੋਲ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਟੇਢੀ ਮੇਢੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਬਟ ਅਕਸਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਬਰੰਗ ਰੇਡੀਓ 94.7 FM ਦੇ ਜੀ।

0: कैनेडा विच रहंदिया इंश्योरेंस की बहुत अहमियत है। किसी भी तरह की इंश्योरेंस ले पंजाब इंश्योरेंस दे रीजनल मैनेजर हरपिंदर सिद्धू नाल आज ही संपर्क करो। सुपर वीजा, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, RESP दिया वधिया सेवावां लई पिछले लंबे अरसे तो कैलगरी विच जानिया पहचानिया नाम है हरपिंदर सिद्धू। ए इंश्योरेंस लई नामवर कंपनियां नाल काम करदे हन। होर जानकारी लई पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिद्धू नाल 403-404-3500 ते संपर्क करो।
1: अपने घर का दूजा नाया सुकून ते कैनेडा च घर खरीदना एक वड्डी चुनौती।
2: घर खरीदने तो पहला इत्मीनान नाल किसे प्रोफेशनल दी सलाह जरूर लाओ।
1: वधिया घर खरीदना पैसे बचाने ने, सिरदर्दी तो भी बचना ते याद कर लो एक नाम मनदीप सिंह गिल।
2: सिर्फ घर खरीदने ले ही नहीं बल्कि बेचना भी होवे ता बिल्कुल सही सलाह देणगे मनदीप सिंह गिल।
1: घर खरीदने ते वेचण लई मैक्सवेल सेंट्रल दे नाल काम करदे मनदीप सिंह गिल देणगे वधिया सलाह ते प्रोफेशनल सर्विस।
2: रियल्टर मनदीप सिंह गिल दा नंबर नोट करो 403-617-1868।
1: जेकर कर रहे हो घर खरीदन ते वेचन दी प्लानिंग मनदीप सिंह गिल नू कॉल कर लो जां विजिट करो उना दी वेबसाइट mandeep.realtor।
2: मैक्सवेल सेंट्रल दे रियल्टर मनदीप सिंह गिल 403-617-1868।
0: ਵਾਸੀਓ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਖੁਦ ਫਿਕਰ ਛੱਡੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਓਇਸਿਸ ਸਮਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ। ਸਨਰਿਜ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਸ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਡਾਕਟਰਸ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੇ ਚਲੇ ਆਓ। ਇੱਥੇ ਵਾਕ ਇਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਨਿੱਘਾ ਵੈਲਕਮ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ। ਅਸੀਂ ਹਫਤੇ ਦੇ 6 ਦਿਨ ਖੁੱਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਡਾਇਲ ਕਰੋ 587-617-4696 587-617-4696। ਓਇਸਿਸ ਸਮਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। 587-617-4696।
3: सोने घर दी निशानी हुंदी है शानदार फ्लोरिंग, जिथे कदम रखदिया ही तुहाडे मेहमान फ्लोरिंग कंपनी दा पता पुछन लग जान। ते ओ पता है कैलगरी कारपेट एम्पायर, जिथे तुसी ले सकदे हो अपनी पसंदी फ्लोरिंग दा समान। फ्लोरिंग घर दा होवे या होवे कमर्शियल, नवा लवाना होवे या होवे रेनोवेशन दा प्लान, कारपेट, हार्डवुड, लेमिनेट, टाइल ते होर शानदार फ्लोरिंग दे डिजाइनां नाल भरिया है इना दा शोरूम। अज ही इना दे शोरूम ते पुज्जो 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी, कैलगरी कारपेट एम्पायर। फोन नंबर 403-510-1515 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: ग्रोसरी खरीदन ले हमेशा याद रखो कैलगरी दा मशहूर सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
1: ताजियां सब्जियां, फल फ्रूट, दालां, मसाले ते बर्तना तो इलावा घरां दी वरतों दा हर समान मिलेगा। कीमतां कट ते क्वालिटी A1।
2: जानिया पछानिया नाम है सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
1: तुहाडी ग्रोसरी दियां लोड़ां पूरियां करन लई सांझा पंजाब दियां कैलगरी दे विच हन 6 लोकेशनां। हफ्ते दे 7 दिन सवेरे 9 बजे तो लैके शाम 9 बजे तक।
2: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर, पहली लोकेशन 331-3690 वेस्टमिंस ड्राइव,
1: दूजी लोकेशन 117-7780 एवेन्यू,
2: तीजी लोकेशन 570-6520 फाल्कनरिज बुलेवार्ड,
1: चौथी लोकेशन 606 सिटी स्केप स्क्वायर,
2: पांचवी लोकेशन 3150-235 रेड एम्बर्स वे,
1: छेवी लोकेशन 445 कैरिंगटन बुलेवार्ड नॉर्थ वेस्ट कैलगरी।
2: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर दियां 6 लोकेशनां दा सांझा फोन नंबर
1: 403-835-2222।
4: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 647-702-2023 647-702-2023
5: लाइसेंस नंबर 10394।

94.7 FM प्रोग्राम संगीत स्टूडियो, मैं हूं शान। 21 डिग्रीज इन एंड अराउंड कैलगरी। आज है सितंबर 25th 2026। साल का 268वां दिन, 97 डेज आर रिमेनिंग अंटिल द एंड ऑफ द ईयर। आपसे दो तीन हफ्तों की गैर हाजिरी के बाद मुलाकात हो रही है, उसके लिए आपसे बहुत बहुत माजरत। आज के प्रोग्राम में लाइक ऑलवेज काफी सारी चीजें हैं, न्यूज ऑफ द डे, टॉपिक ऑफ द वीक, अच्छा चुनीदा सिलेक्ट किया हुआ खूबसूरत म्यूजिक और आपके मशवरे वगैरह प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे। संगीत स्टूडियो, योर वीकली डोज ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन एंड हिट देसी म्यूजिक, योर फ्राइडे ड्राइव होम शो। आज के वर्ड्स ऑफ विजडम में किसी बड़े आदमी ने कहा था कि व्हेन अ फूल गेन्स पावर, द फर्स्ट थिंग ही डज इज साइलेंट द वाइज, द नेक्स्ट थिंग ही डज इज गैदर अदर फूल्स अराउंड हिम, द फाइनल थिंग ही डज इज डिस्ट्रॉय द नेशन। इस बात का अमेरिका से कोई लेना देना नहीं। प्रोग्राम में संगीत आपको लेके चलता हूं आज की पहली प्रेजेंटेशन की तरफ, एंड दिस सॉन्ग इज अपने जमाने का हिट सॉन्ग।

0: We want to hit you hard with hit music. Because when hit music hits, you feel no pain. Keep listening, keep driving with Sean.
1: Welcome back to 94.7 FM पर प्रोग्राम संगीत. Canada, क्या कहते हैं? Pivoting away. Canada जो है वो जो उसका traditional connection, ताल्लुक, trade deals, relationships America के साथ थे, continuously उससे दूर होता जा रहा है या उसे दूर किया जा रहा है. कभी कभी आप रिश्ते तोड़ते हैं, पर कभी कभी आपके पास चॉइस नहीं होता, दूसरे आपको आपसे रिश्ते तोड़वा रहे होते हैं. एक फाइव आई इंटेलिजेंस शेयरिंग होती थी जिसमें इंग्लिश स्पीकिंग पांच जो

even more. A lot more. Keep listening. Sangeet Studio. Welcome back. Sangeet Studio में आपको एक बार फिर कहते हैं कि आंखें जो है ना, जितनी शायरी, जितनी किताबें, जितने मामले आंखों में, ये कहना अच्छी आंखों के पुजारी हैं मेरे शहर के लोग. अच्छी आंखों के पुजारी हैं मेरे शहर के लोग, तो मेरे शहर में आएगा तो छा जाएगा. हम कयामत भी उठाएंगे तो होगा कुछ नहीं, हम कयामत भी उठाएंगे तो होगा नहीं कुछ, तो फकत आंख उठाएगा तो छा जाएगा. यूं तो हर रंग ही में सजता है बराबर तुझ पर, यूं तो हर रंग ही सजता है बराबर तुझ पर, सुर्ख पोशाक में आएगा तो छा जाएगा. पंखड़ी होंठ, मधुर लहजा और आवाज उदास, यार तो शेर सुनाएगा तो छा जाएगा. जिस मुसव्वर की नहीं बिकती कोई भी तस्वीर, तेरी तस्वीर बनाएगा तो

0: your choice, your voice. Zara Vakri type ki presentation. Full of masti, full of information. Program is being presented by Sean. Stay tuned. Stay tuned. Stay tuned.
1: Welcome back. Do news consumer world se aapki nazar karte hain. Costco ne report kiya 11.2% profit. Costco ka ye kehna hai ki ye quarterly profit isliye zyada hua hai, sales increase, sorry maaf kijiyega, 11% aur ye double digit ki sales ko choti nahi hoti. Jab aap millions dollar ki sale kar rahe hain to aap sochein ki uska 11% kitna banta hai. Waise bhi any numbers in business world jo double digit mein jaye to wo bahut hi overwhelming hota hai, stock exchanges upar chali jati. So 11% 2% sales increase hui hai quarter mein Costco ki. Reason, Costco ka ye kehna hai ki log ये जो अफोर्डेबिलिटी है स्पेशली गैस प्राइसेस की वजह से लोगों के पास पैसों का प्रॉब्लम है, लोग केयरफुल हैं, तो ज्यादातर लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो बल्क बाइंग करके पैसे बचा सके. और दूसरी न्यूज है जी, मोर देन 10,000 रेफ्रिजरेटर्स रिकॉल्ड इन कनाडा ओवर फायर रिस्क. अब एक कंपनी है जिसका नाम है ग्लैंस रेट्रो रेफ्रिजरेशन, इन्होंने इनके बनाए हुए कंज्यूमर फ्रिजेस जो घरों में 10,000 से ज्यादा, उनको रिकॉल किया गया है क्योंकि होता यह है कि उसमें पोटेंशियल है शॉर्ट सर्किट फायर का. काफी ज्यादा आग लगने के इंसिडेंट होने के बाद हेल्थ कनाडा ने उनको वार्न किया और उनसे कहा कि ये फ्रिजेस आपकी खराब हैं, इनको ठीक करें. अब कंज्यूमर से यह कहा गया है कि अगर आपने इस कंपनी के फ्रिज खरीदे हैं तो आप सर्टन मॉडल्स हैं जो आपको न्यूज आप गूगल करेंगे तो मिल जाएंगे, इनकी वेबसाइट से मिल जाएंगे, तो आप जाके उन्हें फ्री रिपेयर करा लें या वो घर आके करेंगे, ये मुझे डिटेल्स नहीं पता. दीज आर टू ऑफ द न्यूज. आज टॉपिक ऑफ द वीक में जो हमारी प्रीमियर हैं डैनियल स्मिथ साहब अल्बर्टा की, पोल्स में उनके काफी हालात खराब नजर आ रहे हैं. अभी भी यानी उतने बुरे तो नहीं है, पर जहां पर वो थी वो बहुत बुरे हैं. आगे चलकर प्रोग्राम में थोड़ी देर के बाद टॉपिक ऑफ द वीक में इस पर डिटेल्ड बात

0: देर शाम तक। तब देर किस गल दी, आज ही डायल करो 5876174696 587-647-4696 ओएसएस स्माइल मेडिकल तुहाड़ी सेहत साड़ी जिम्मेवारी 5876174696
1: सोने घर दी निशानी हुंदी है शानदार फ्लोरिंग जिथे कदम रखदिया ही तुहाडे मेहमान फ्लोरिंग कंपनी दा पता पुछन लग जान ते ओ पता है कैलगरी कारपेट एम्पायर जिथे तुसी ले सकदे हो अपनी पसंदी फ्लोरिंग दा समान फ्लोरिंग घर दा होवे या होवे कमर्शियल नवा लवाना होवे या होवे रेनोवेशन दा प्लान कारपेट हार्डवुड लेमिनेट टाइल ते होर शानदार फ्लोरिंग दे डिजाइनां नाल भरिया है इना दा शोरूम अज ही इना दे शोरूम ते पुज्जो 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी कैलगरी कारपेट Empire. Phone number 403-510-1515. 2935 19th Street, Northeast Calgary.
2: Listeners wanted for Hit Desi Sangeet, blended with news and events. Latin entertainment melt in your brain.
3: Welcome back, 94.7 FM program Sangeet being brought to you by Sur Sangam Radio. Aaj hai September 25th saal ka, 268 din hai. And sadly, sirf 97 दिन इस साल के बाकी रह गए टाइम पहले कभी रुका था ना आज रुकने वाला है इसलिए जो चीजें करनी हैं कर गुजरे जो कहनी है कह गुजरे जो क्या क्या होती है तीसरी कहना सुनना करना या सुनना भी जो सुननी है वो भी सुन गुजरे एनीवेज टॉपिक ऑफ द वीक पे मैंने आपसे बात करनी है प्रीमियर डैनियल स्मिथ के बारे में के हवाओं में उड़ रही थी पॉपुलैरिटी उनकी पार्टी की यूसीपी की और खुद उनकी जो पर्सनल अप्रूवल रेटिंग थी वो इतनी हाई थी कि क्या कहते हैं कि कोई छू नहीं सकता था लेकिन ऐसा क्या हुआ है पिछले चंद महीनों से कि जो रेटिंग है पार्टी की और उनकी पर्सनल अप्रूवल वो कंटिन्यूसली नीचे जा रही है अब न्यू जैनेट ब्राउन ओपिनियन रिसर्च पोल सीबीसी के लिए जो किए गए थे और जो आज रिलीज हुए उनके मुताबिक यूसीपी एंड अल्बर्टा एनडीपी टाइड एट 41% और ये पहली बार हुआ है पिछले 5-6 सालों में कि दोनों पार्टीज के जो पोल्स हैं वो बिल्कुल इवन हो गए और जब आप ये कहते हैं 41% फॉर एनडीपी एंड 41% फॉर यूसीपी तो ये एनडीपी की फेवर में इस तरह से जाता है कि एनडीपी की 41% जो है वो बड़े शहरों में कैलगरी एंड एडमिंटन जो दूसरे अर्बन सेंटर्स हैं यहां पर उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है तो जो नंबर ऑफ सीट्स बनती हैं वो उनकी बहुत बढ़ जाती है यानी उनकी मेजॉरिटी बन जाती है अब जो कैलकुलेशंस हैं यानी दोनों पार्टीज 41% पे हों इलेक्शन हो तो एनडीपी की मेजॉरिटी बन जाती है सो ये इस तरह की कैलकुलेशन है बट हैविंग सेड दैट 41% पे हैं दोनों अभी इस महीने के शुरू तक जो लीड थी यूसीपी की वो 4-5% ऊपर थी और जो पिछले पोल्स किए गए थे उनसे 8% लीड उनकी कम हुई है वो 49% थी वो 41% पे आई है और एनडीपी ने 5% गेन किया है एनडीपी 36% पे थी वो 41% पे चली गई अब डैनियल स्मिथ की जो पर्सनल अप्रूवल रेटिंग है उसकी बात कर लेते हैं द लेटेस्ट एंगस रीड पोल कहते हैं ये दूसरा पोल है वो क्या कहता है जी अप्रूवल रेटिंग उनकी है 38% जो कि 56% मतलब ये है कि लोग उनको डिसअप्रूव करते हैं उनकी परफॉर्मेंस को डिसअप्रूव करते हैं जो कि बहुत हाई है जब इतने लोग आपको डिसअप्रूव करें तो इश्यूज हैं आपके साथ ठीक है जी अब ये अलग बात है कि पिक्चर इतनी सादा नहीं है ये पिछले चंद वीक्स में बहुत तेजी से चीजें तब्दील हुई हैं अगर हम मंथ के शुरू की बात कर लें सितंबर के शुरू की बात कर लें तो एनडीपी जो यूसीपी 46% पे थी और दो दूसरे पोल में 43% पे थी जो कि अब कम होकर 41% पे आ गई है उनकी पर्सनल रेटिंग भी जो है वो इतनी नीचे नहीं थी अब ये बात करते हैं कि ऐसा हुआ क्या तीसरा जो इन पोल्स के अलावा जो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे चीज हुई है वो कैलगरी शाह की सीट उन्होंने हारी है और वो हारी इस तरह से ज्यादा अहम है कि वो सीट यूसीपी की सीट थी एनडीपी ने जीती है अगर जिस पार्टी की सीट होती वही जीत लाती जाती तो कोई बिग इशू नहीं था बट इट बिकम्स अ बिग इशू कि जब जीतने वाली पार्टी गवर्नमेंट करने वाली पार्टी से अपोजिशन सीट छीन ले तो देन इट्स अ कंसर्न फॉर द पार्टी अब हुआ क्या है तीन चार चीजें हैं बड़ी जो ड्राइव कर रही हैं इन पोल्स को और उनके पर्सनल अप्रूवल को लोग ये समझते हैं कि हेल्थ पे तवज्जो देनी चाहिए हेल्थ के इश्यूज हैं लोगों की इमरजेंसी में डेथ्स हो रही हैं लोगों का वेट टाइम बहुत ज्यादा हो गया है एम्बुलेंसेज नहीं पहुंचती अगर आप सर्च करें तो आपको इतनी न्यूज मिल जाती है ऑलमोस्ट एवरी डे आपको अल्बर्टा से कोई न्यूज मिलती है सेकेंड एजुकेशन जो एजुकेशन का बजट है जो टीचर्स के मसाइल हैं टीचर्स ने जब स्ट्राइक की थी तो नॉट विद स्टैंडिंग क्लॉज लगा के उनकी स्ट्राइक को खत्म कर दिया गया था जो कि खुद बहुत सारे लोग समझते हैं कि बहुत

0: Sangeet Studio, Sangeet Studio. Weekends will never be same. Sit back, relax and join Sangeet Studio, our prime relaxing time show. Sangeet Studio with Sean, with Sean. वेलकम बैक. प्रोग्राम संगीत आप सुन रहे हैं मेरा और आपका साथ रहता है हर फ्राइडे को. When a fool gains power, the first thing he does is silence the wise. The next thing he does is gather other fools around him. The final thing he does, he destroyed the nation. आज के प्रोग्राम के ये वर्ड्स ऑफ विजडम थे. मेरा आपका साथ तो रहता है फ्राइडे को. कोई तारीफ तनकीद हो, कोई मशवरा हो, कुछ कहना हो, 4036126100 नंबर है. प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय सुर संगम रेडियो. आपका प्रोग्राम सुनने का, तारीफों तनकीदों का, कॉल्स का बहुत बहुत बहुत शुक्रिया. टेम्परेचर बहुत तेजी से अगले फ्यू डेज में नीचे जाने वाला है. मतलब ठंड तो नहीं आ जाएगी, लेकिन ठंड वाली फीलिंग आपको आना शुरू हो गई है. राइट नाउ इट इज 19 इंड एंड अराउंड कैलगरी. आई विश ऑल ऑफ यू लव, पीस, रिस्पेक्ट, हेल्थ एंड वेल्थ. आपसे मुलाकात होगी अगले फ्राइडे को, फिर आएंगे घर. खुदा लाया.
1: Sangeet Studio, worth listening every show. Come celebrate your weekends with Sean at Sangeet Studio.